0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: कभी कभी एक घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट से नहीं बनता, उसमें बचपन रहता है। कल पापा का फोन आया था। उन्होंने बहुत नॉर्मल से आवाज में बात की और कहा, बेटा हमारा पुराना घर बिक गया। बस इतनी सी बात थी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल एकदम खामोश हो गया। वो घर जहाँ पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, जहाँ दीवार पर मेरी हाइट की लकीरें बनती थी, जहाँ माँ की आवाज गूंजा करती थी, जहाँ पापा ने पहली बार कंधे पर बिठाकर पतंग उड़ाई थी, और वो छत जहाँ सपने आसमान से भी बड़े लगते थे, आज वो सब किसी और का हो गया। मैं सोच रहा था, क्या नए लोग भी उस दीवार को वैसे ही देखेंगे? क्या उन्हें पता होगा कि उस कोने में कभी एक छोटा सा बच्चा बैठकर होमवर्क करता था, और उस आंगन में कितनी बार बारिश में भीगा था? शायद नहीं, क्योंकि घर बिकते हैं, यादें नहीं। फिर अचानक समझ आया, घर छूट गया है लेकिन बचपन नहीं। वो अब भी मेरी बातों में है, मेरी हंसी में है, मेरे अंदाज में है। और शायद इसीलिए कहते हैं, घर की कीमत रजिस्ट्री बताती है, लेकिन उसकी असली वैल्यू सिर्फ यादें जानती है। अगर आज भी आपके पास अपना बचपन वाला घर है, तो कभी फुर्सत से उसकी दीवारों को देखना। हो सकता है उन पर पेंट नया हो, लेकिन उनके अंदर आज भी आपकी हंसी गूंजती है। और अगर वो घर अब किसी और का हो चुका है, तो उदास मत होना, क्योंकि घर का पता बदल सकता है, लेकिन बचपन का एड्रेस कभी नहीं बदलता। वो हमेशा दिल में रहता है। यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, हम सबके बचपन की कहानी है। कभी कभी दीवारें नहीं, उनसे जुड़ी हुई जिंदगी छूट जाती है।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस, N6 सिडको, छत्रपति।

Let's talk about healthy life. You are listening MGM 90.8 FM. RJ अदनान तुमच्या सोबत आहे. मैं आपसे कहूँ कि मीठा पूरी तरह छोड़ना जरूरी है. बस समझदारी से खाने की जरूरत है आपको. तो कर पाओगे आप. थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर लोगे. हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि यार हेल्दी बनना है, मीठा बिल्कुल बंद. लेकिन असल बात यह है कि बैलेंस सबसे जरूरी होता है. अगर आपको मीठा बहुत पसंद है तो पहले स्टेप है क्वांटिटी कम करना. मान लीजिए रोज 2 मिठाई खाते हैं तो 1 से शुरुआत कीजिए. दूसरा, सॉफ्ट ड्रिंक और पैकेज जूस की जगह पानी, नींबू पानी या बिना चीनी वाला बेवरेज ट्राई कीजिए. बस इतना सा चेंज भी शुगर इंटेक को काफी कम कर सकता है. तीसरा, जब मीठा खाने का मन करे तो कभी कभी सीजनल फ्रूट्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. उसमें नेचुरल स्वीटनेस के साथ फाइबर और न्यूट्रिशन भी मिलते हैं. हर चाय या कॉफी में एक्स्ट्रा शुगर डालने की कोई जरूरत नहीं है. वो धीरे धीरे कम कीजिएगा. लेकिन याद रखिए, अगर आपको डायबिटीज है या डॉक्टर ने शुगर कंट्रोल करने के लिए कहा है तो अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले उसकी सलाह डॉक्टर से जरूर ले. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है. आज का हेल्दी मंत्र यही है, जिंदगी में मीठा जरूर रखिए लेकिन सिर्फ चीनी से नहीं, अपनी मुस्कान और सेहत के साथ. हेल्दी लाइफ का मतलब मीठा छोड़ना नहीं, मीठा समझदारी से खाना होता है. याद रखिए, हेल्दी रहिए और सुनते रहिए.

0: जलाए।
1: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM ऑल इज अपने साथ है डॉक्टर मानसी करजगावकर मैम फ्रॉम MGM साइकोलॉजी डिपार्टमेंट HOD। सो मैम, मेरा आपसे सवाल आज ये है, अगर मैम किसी कलीग या फ्रेंड को ऑफिस स्ट्रेस की वजह से स्ट्रगल करते हुए हम देखते हैं, तो हम उसे हेल्प कैसे कर सकते हैं?
2: सबसे पहला तो हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए। और कभी कभी इतना स्ट्रेस्ड आउट होता है, कोई भी पर्सन परेशानी में कंफ्यूज रहता है, तो हमें उनको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम हैं, हमसे शेयर करो। बिकॉज हम अच्छा होना भी कभी कभी सामने वाले के लिए प्रेशर बन सकता है। तो हम बड़े सटल तरीके से उनको ये बोल सकते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, तो अगर आपका मन हो तो हम बात कर सकते हैं। हमको बस इतना बोलना है, हमको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है कि बताओ बड़े आप स्ट्रेस में लग रहे हो, बहुत टेंशन है, बता दो आपको हल्का फील होगा हमको। तो ये चीजें ना प्रेशर क्रिएट करती हैं। और ये जब खुद होके अपने आप आपके पास आए बोलने के लिए, तुरंत हमको सजेशंस नहीं देने चाहिए। पहले शांति से, कामली, पीसफुली हमको उनको सारा सुन के लेना है। क्योंकि कभी कभी आधे से ज्यादा दिक्कतें जब कोई शेयर करता है

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस फेवरेट रेडियो शो में जिसका नाम है ऑल इज वेल एंड यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। अदनान आपके साथ है और वक्त है फरमाइश का, और आज फिर से लेकर आया हूँ मैं आपके साथ यादों का मेलेडियस का एक सुनहरा सफर। और आज की फरमाइश आई है प्राजक्ता काळे जी की तरफ से।

गाना था फिल्म कलाकार से, जिसे गाया है लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार जी ने। कुछ गाने ना तो वक्त के साथ पुराने नहीं होते और ये उनमें से एक गाना है। इसके लिरिक्स काफी गहरे हैं जो कि सीधे दिल को छू जाते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सुनते हैं ये बेहतरीन सा फरमाइश वाला गाना नीले नीले अंबर पर, प्राजक्ता जी की फरमाइश पर। और अगर आपकी फरमाइश हो तो आप हम तक पहुँचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। बिंदास अपनी फरमाइशें बताइए एंड

तब क्या होता है, सेंटर में होता है, वहां से हर एक सिटी के लिए, गांव के लिए बस मिलती है। लेकिन वही बस स्टैंड अगर खराब निकले और वहां पर गड्ढे हो जाए तो क्या करोगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस चलता है चलने दो, बल्कि चलता ही रहेगा। ऐसी सिचुएशन अपने शहर में भी है। हेलो, भाई सलवार जी अदनान एंड यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। और अपना जो सेंट्रल बस स्टैंड है उसके हाल बेहाल हो चुके हैं, मतलब इतने वहां पर गड्ढे हो गए कि आप वहां पर जाने के बाद आपको फ्री में मसाज तो मिलने ही वाली है। अगर आपको चांद का सफर करना है, चांद के ऊपर भी गड्ढे होते ना, तो कुछ उस तरीके से गड्ढे आपको इस सेंट्रल बस स्टैंड में आपके दिखाई देगा, और वहां से बस में गुजरते वक्त आपके ढक की चिकी ढक होने ही वाली है। और अपने पूरे बस स्टैंड में से ना तो हर दिन 20,000 से ज्यादा लोग, मतलब ट्रैवलर वहां से गुजरते हैं, उन सभी को हर दिन ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। एंड हर दिन का इनकम कितना है पता है अपने बस स्टैंड का, तकरीबन 17 लाख रुपए से भी ज्यादा। लेकिन फिर भी इतना पैसा आने के बावजूद ये बस स्टैंड के हाल हवाल कुछ ठीक नहीं हो रहे। बस रास्तों की बात नहीं, सेंट्रल बस स्टैंड का जो छत है वो भी कभी कभार टिप टिप बरसा पानी, इस तरीके से टिप टिप बरसता रहता है उसमें से पानी बारिश के मौसम में तो, और जो प्लास्टर लगाया हुआ है वो भी गिरता हुआ नजर आता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रशासन के पास टाइम वो तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि प्रशासन बहुत बिजी है हमारा, और ऐसे छोटे मोटे मुद्दों के लिए उनके पास टाइम नहीं है शायद, इसलिए अब तक ये काम बस होता है कहकर कब होगा वो नहीं पता है, बस आश्वासनों पर जिंदा है। अब तक तो हमें आदत हो गई इन सब चीजों की, आगे भी होते रहेगी, चलता है चलने दो, बल्कि चलता ही रह रहा है। हाँ, कल को अगर कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो गई तो फिर सभी की आंखें खुल जाएंगी और तब इसका मेंटेनेंस होगा, तब तक जाऊं दिया। अब हम क्या ही कह सकते, बस इतना ही कह सकते कि बी सेफ एंड बी केयरफुल, सो स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान।

0: हम सभी को एक शख्स का बहुत ही इंतजार होता है, वो है विकास। हेलो, मायसेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। हाय के विकास, आपके आसपास या आपका कोई दोस्त मतलब बड़े लकी लोग यार जिनका नाम विकास है, हर कोई उनको ढूंढता है। हम भी ढूंढ रहे थे तो अपने शहर में विकास कहां पर है, तो आजकल दिखाई दे रहा है बड़े बड़े गड्ढों वाला विकास। जहां देखो वहां पर गड्ढे ऐसे खोदे हुए है, क्योंकि काम शुरू है ना भाई, ऐसा मत कहना कि काम नहीं शुरू है। हाँ, गड्ढे खोदना, उसके बाद 2-4 महीने आराम से काम चलना, ये एक पुरानी आदत है अपने शहर में। अपने शहर में ना 3-4 टाइप के गड्ढे खोदे हुए आपको नजर आएंगे। पहला है पाइपलाइन वाला पानी की, देन ड्रेनेज सिस्टम वाला, फिर गैस पाइपलाइन वाला गड्ढा आपको बड़ा सा नजर आएगा। एंड वो गड्ढा पिछले 1-2 महीने से वैसा ही है और उसके अंदर जो काम होना था वो हुआ ही नहीं। ऐसा एक एरिया ही नहीं, अपने शहर में बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर ये काम शुरू है लेकिन अधूरे काम छोड़ दिए गए है। पता नहीं कि वो आधा अधूरा काम करते हैं और फिर चले जाते हैं, बाद में मूड बना तब आकर काम पूरा कर देते हैं। और इस वजह से दिक्कत क्या आ रही है, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में कीचड़ होता है, बारिश आ रही है, ऐसे गड्ढे ओपन है और खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, इसके अंदर कोई गिर गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा, कोई नहीं लेगा ना। एंड इस गड्ढों की वजह से ना जो मिट्टी है आसपास फैल रही है एंड गाड़ियां भी स्लिप हो रही है। तो इतना मैं कहूंगा कि देखो भाई, काम कर रहे हो आप, विकास का काम कर रहे हो जिसका हम सबको इंतजार था वो हो रहा है, लेकिन अगर वक्त पर हो गया ना तो इसकी तारीफ भी अच्छे से होगी और आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी। और कम से कम आप इतना तो कीजिएगा, जहां पर आपने ऐसे गड्ढे बनाए हुए हैं बड़े बड़े, उसके आसपास तो बैरिकेड्स लगाइए, कुछ सिग्नल लगाइए ताकि लोगों को समझे कि यहाँ पर गड्ढा है। सो मेरी जान, बी सेफ बी केयरफुल, क्योंकि काम तो कछुए के स्पीड से चालू है, कब होगा पता नहीं। बस हमें अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, वरना आपकी एक छोटी गलती से आप सीधे गड्ढे में गिर सकते हो। तो बी सेफ एंड बाकी तो चलता है, चलने दो, बल्कि चलता ही आ रहा है। स्टे ट्यून्ड।
1: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus and N6IRCO Chhatrapati संभाजीनगर।
2: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
3: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
4: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 15 नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
3: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा व्हिजिट mgmu.ac.in।

कौन कहता है कि अगर आपको ट्रैफिक का मजा लेना है तो मुंबई पुणे जाना ही जरूरी होता है। अपने शहर के रास्ते किसी मेट्रो सिटी से कम थोड़ी है। हेलो, मायसेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। किसी ना किसी चीज में अपने शहर ने तरक्की की है, वो है ट्रैफिक वाली बात में। और पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि शहर में

क्योंकि फंस गए तो बड़ा पछताओगे। बाद में मत कहना कि मुझे तो नहीं पता था ऐसा कुछ हो रहा है अपने शहर में, अब पता चल गया। याद रखिएगा, एंड ट्रैफिक से मुक्ति हमें कब मिलेंगी ये तो किसी को नहीं पता भाई। सॉल्यूशन बस एक ही है कि रॉन्ग साइड से आने वाले लोग थोड़ा तमीज में गाड़ी चलाइएगा, सीधे साइड से चलाइएगा, वरना सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम इन्हीं लोगों की वजह से। और ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिएगा, देखो फिर अपने आप ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जो रूल्स ब्रेक करता है उन्हीं की वजह से ट्रैफिक जाम लंबा होता है। तो ख्याल रखिए, और बाकी तो ट्रैफिक में फंसे बोर नहीं होगे आप, मैं आपके साथ रहूंगा और सुपर हिट गाने भी आपके साथ रहेंगे। सो स्टे ट्यून।

जिसके पास जो चीज होती है ना उसको उसकी कदर नहीं होती, ये बात सच है यार। वैसे अपने शहर में भी हो रहा है शायद। हेलो, मैं सेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिस्निंग एमजीएम 90.8 FM। इतना बड़ा ऐतिहासिक वारसा हमारे शहर में है, 52 दरवाजों का शहर है, किले है, लेकिन कहते ना जिनके पास जो चीज़ होती है उनको उसकी उतनी कद्र नहीं होती। ऐसा महसूस हो रहा है अबाउट अपने शहर के दरवाजों के बारे में। 52 दरवाजे अपने शहर है, सिटी ऑफ गेट के रूप में इसको जाना जाता है, लेकिन ये दरवाजे कितने क्लीन है ये हम सभी की नजरों के सामने है। बहुत सारे ऐसे दरवाजे जो कि गिरते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारे दरवाजों के आसपास तो पूरा अतिक्रमण हो गया है। तो रूल्स और रेगुलेशन क्या कहते हैं कि ऐतिहासिक वास्तु आणि तटबंदीच्या 15 मीटर एरिया मध्ये पक्की बांधकामे करण्यासाठी आणि अतिक्रमण करण्यासाठी सख्त मनाई आहे, पण हे रूल्स फक्त कागदावरच आहेत। बिकॉज रियलिटी में हमने देखा है कि बहुत सारे अपने शहर के जो दरवाजे है जिसे अपने शहर की पहचान है उसके आसपास पूरा अतिक्रमण हो गया है। अब प्रशासन ने एक मुहिम शुरू की है कि जो अपने शहर के दरवाजे है उसके आसपास जितना भी अतिक्रमण रहेगा वो पूरा हटाने वाले है, वो क्लीन करने वाले हैं। 15 मीटर एरिया के आसपास कोई अतिक्रमण नहीं रहेगा, साफ सुथरी जगह रहेगी ताकि अपने शहर की जो पहचान है सिटी ऑफ गेट वो बरकरार रहे। एंड बाय द वे, ये बस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है। ऐतिहासिक स्थल है, तिथे जाऊन अपन कचरा करतो, बिनधास्त अपन पानी की बॉटल तिथे टाकतो, थुकतो आणि अस्वच्छता ठेवतो, पण हे चुकीचं करतायत ना तुम्ही। तो बदलाव चाहिए तो प्रशासन कर ही रहा है, अपने आप से भी हमने पूछना चाहिए कि हम भी बदलाव चाहते हैं, अगर है तो सुधरना तो हमें भी पड़ेगा, सुधरेगा। एंड आई होप अब प्रशासन जो मुहिम शुरू कर रहा है तो इससे अपने सिटी ऑफ गेट्स एकदम खूबसूरती से साफ नजर आएंगे एंड अतिक्रमण मुक्त नजर आएंगे। बाकी स्टे ट्यून।

ऐसा मुझे लगता है। हेलो, माय सेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और हम सभी ने ना तो अपने शहर का ये सुपर डुपर हिट गाना तो सुना ही होगा, जिसके बिना हमारी सुबह दोपहर शाम आजकल होती नहीं है। और एक गाने में एक अलग वाइब तो है यार, और जैसे गाना प्ले होता है तो हम सभी लोग घर के बाहर आते

0: और यू नो व्हाट, ये जिंगल किसने गाई है पता है? ये जिंगल गाई है शान। जी हाँ, बॉलीवुड के सुपर डुपर हिट सिंगर शान की आवाज है। मुझे भी अभी पता चला था, आई थिंक मुझे बहुत लेट पता चला होगा ऐसा लगता है, और बहुतों को पता भी होगा, किसी को नहीं होगा तो पता चल जाएगा। और ये ऐसी जिंगल है ना भाई, अपने लवों पर ही आ ही जाती है। और आजकल हम सभी की नींद ना तो किसी अलार्म से नहीं बल्कि इस जिंगल की वजह से खुलती है। अपने शहर में ना तो सफाई भी आजकल बहुत दिख रही है, एंड ये जो घंटा गाड़ी है अब रात के वक्त भी और दिन भर भी हर एक गली मोहल्ले में आती है, कॉलोनी में आती है और पूरी सफाई करती है। इससे आई होप कि बहुत जल्दी अपना शहर भी एकदम साफ सुथरा हमें नजर आएगा। एक नंबर होइल छत्रपति संभाजी नगर। सो स्टे ट्यून।
1: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTEC 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, संभाजीनगर।
0: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
2: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
3: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। या सोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
2: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी। To visit mgmu.ac.in.

नमस्कार आदाब, आरजे अदनान आपके साथ है और गानों के किस्सों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और ये गाना हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक राग अहिर भैरव पर बना हुआ है। म्यूजिकल थेरेपी होती है ना, तो उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन को छू मंतर करने के लिए इस राग का यूज किया जाता है। ये राग को ना मॉर्निंग राग ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसे मॉर्निंग के वक्त ही गाया जाता है, सुबह 8 से 10 बजे के दरमियान। अहिर मतलब गाय भैंस चराने वाला, और ये राग भी गाय के गले में जो घंटियां होती ना, तो उससे डेवलप हुआ है ऐसा भी कहा जाता है। इस राग को मॉर्निंग के वक्त में सुनने के बाद दिन भर आपका मन एकदम स्ट्रेस फ्री होता है और सुकून भरा दिन आपका गुजरता है। और अपनी इंडस्ट्री में इस राग पर बहुत सारे गाने बने हैं, जैसे कि तो चलिए फिर इसी राग पर बनाया हुआ ये गाना अलबेला सजन आयो रे, ये अभी हम सुनते हैं। स्टे ट्यून।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM।

0: में थोड़ी खाली सी जगह,
1: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है
2: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM,
3: साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे।
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शाम का ये खूबसूरत वक्त आपके नाम। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा बीता होगा। अगर दिन थोड़ा व्यस्त रहा हो तो अब थोड़ा रुकिए, मुस्कुराइए और इस प्यारी सी शाम का आनंद लीजिए। कहते हैं शाम सिर्फ दिन का अंत नहीं होती बल्कि नए सुकून की शुरुआत भी होती है। चाय की एक प्याली, अपनों की बातें और अच्छे गानों का साथ, बस इतना ही काफ़ी है पूरे दिन की थकान मिटाने के लिए। तो आप जहाँ भी हैं, घर पर, ऑफिस से लौटते हुए या सफ़र में, हम आपके साथ हैं। आने वाले कुछ समय तक सुनते रहिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प बातें और ढेर सारी अच्छी वाइब्स। अपना मुस्कुराता चेहरा बनाए रखिए क्योंकि एक छोटी सी मुस्कान किसी का भी दिन खूबसूरत बना सकती है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से। अब बढ़ते हैं अगले शानदार गाने की ओर। सुनते रहिए और इस खूबसूरत शाम को बनाइए और भी यादगार। ओनली ऑन एफएम 90.8 एफएम साथ।

0: आधुनिक अभ्यासक्रम
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सपोर्ट MNC कोलॅबोरेशन्स इंडस्ट्री विजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप्स
0: लिमिटेड सीट्स आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9890-71-78-44।
2: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546। MGM यूनिवर्सिटी, NC3, छत्रपति संभाजीनगर।
3: कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी ऐसी UG आणि PG साठी एडमिशन मिळवा। BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी साठी MGM यूनिवर्सिटी मध्ये बेसिक एंड अप्लाइड सायन्सेस अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
4: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल। शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा।
5: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26। MGM युनिव्हर्सिटी N6 सिडको। विजिट mgmu.ac.in। कॉल 9503082913।
6: इट्स पी ऑन द ट्रॅक, लेट्स गो।

0: and the one I see.
1: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कभी आपने सोचा है कि हमारी सिर्फ एक उंगली कितनी ताकतवर हो सकती है? एक उंगली से हम मोबाइल चलाते हैं, किसी अपने को मैसेज भेजते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और ज़रूरी काम घर बैठे पूरे कर लेते हैं। लेकिन ये एक उंगली देश के लिए भी बहुत मायने रखती है। चुनाव के दिन इसी उंगली पर लगने वाली स्याही हमें याद दिलाती है कि हमारा एक वोट देश का भविष्य तय करने के लिए अपनी भूमिका निभाता है। आज टेक्निक ने भी हमारी जिंदगी आसान बना दी है। बैंक का काम हो, बिल भरना हो या किसी सरकारी सेवा का लाभ लेना हो, बस एक उंगली का स्पर्श और काम पूरा। इसलिए याद रखिए, छोटी सी उंगली सिर्फ मोबाइल चलाने के लिए नहीं बल्कि सही फैसले लेने, जिम्मेदारी निभाने और देश को आगे बढ़ाने के लिए भी होती है। तो अपनी इस ताकत की कद्र कीजिए, जागरूक बनिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। फिलहाल इसी खूबसूरत सोच के साथ अब वक्त है एक शानदार गाने का। सुनते रहिए आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। चाय का समय हो और साथ में कुछ खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है, लेकिन एक सवाल, अगर आपको चुनना हो तो आप क्या पसंद करेंगे, पैकेट वाला बिस्किट या घर के बने कुकीज़? घर के बने कुकीज़ में सिर्फ स्वाद ही नहीं अपनापन भी होता है, उन्हें बनाते समय प्यार, मेहनत और अपनेपन का एहसास भी शामिल होता है। सबसे अच्छी बात, इसमें हम अपनी पसंद के हिसाब से कम चीनी, अच्छे मक्खन और बढ़िया सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पैकेट वाले बिस्किट लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं, वो आसानी से मिल जाते हैं और जल्दी खाए जा सकते हैं, लेकिन घर के ताज़ा बने कुकीज़ का स्वाद और खुशबू कुछ अलग ही होती है। कभी कभी ज़िंदगी की सबसे प्यारी खुशियाँ बड़ी नहीं होती, एक कप गर्म चाय, घर के बने कुकीज़ और अपनों का साथ, यही तो है असली खुशी। तो अगर इस हफ्ते थोड़ा समय मिले तो घर पर कुकीज़ बनाने की कोशिश कीजिए, हो सकता है उनका स्वाद आपको बचपन की मीठी यादों तक ले जाए। इसी मीठी सी बात के साथ अब वक्त है शानदार गाने सुनने का। आप सुनते रहिए आपका फेवरेट शो दिल से ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि हमारे हाथ खाली है लेकिन दिल सपनों से भरा हुआ है, और सच कहे तो इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके सपने ही होते हैं। हर बड़ा सफ़र एक छोटे से सपने से शुरू होता है। शुरुआत में रास्ता मुश्किल लगता है, मंजिल दूर दिखाई देती है, लेकिन जो लोग अपने सपनों पर भरोसा रखते हैं वो धीरे धीरे अपनी दुनिया खुद बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आज सब कुछ हमारे पास हो, ज़रूरी ये है कि उम्मीद हमारे साथ हो, क्योंकि मेहनत हिम्मत और विश्वास मिल जाए तो खाली हाथ भी एक दिन कामयाबी से भर जाते हैं। इसलिए अगर आपके भी कुछ सपने हैं तो उन्हें संभाल कर रखिए, हर दिन उनके लिए एक छोटा सा कदम बढ़ाइए, और कौन जानता है आज का सपना ही कल की पहचान बन जाए। इसी खूबसूरत सोच के साथ अब सुनते हैं कुछ बेहतरीन गाने जो उम्मीद सपनों और दिल की भावनाओं को बहुत खूबसूरती से बयां करते हैं। सुनते रहिए आप आपका फेवरेट शो दिल से ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात।
1: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IoT साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस N6 को छत्रपति संभाजीनगर।
2: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
3: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
4: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि पदवीनंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
3: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा व्हिजिट MGMU.AC.IN।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी शिक्षा होती है। पैसा, नाम और पहचान समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहती है। पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, शिक्षा हमें सही और गलत की पहचान कराती है, अच्छे फैसले लेना सिखाती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। एक शिक्षित इंसान न सिर्फ अपना भविष्य बेहतर बनाता है बल्कि अपने परिवार और समाज को भी आगे बढ़ाता है। आज के समय में हर बच्चे और हर युवा के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। चाहे स्कूल की पढ़ाई हो, कोई नई कला सीखना हो या नई टेक्निक को समझना हो, हर दिन कुछ नया सीखना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। याद रखिए, शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती, ये एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और दूसरों को भी शिक्षा का महत्व समझाइए, क्योंकि जब हर इंसान शिक्षित होता है तभी हमारा समाज और हमारा देश और भी मजबूत बनता है। इसी खूबसूरत सोच के साथ अब बढ़ते हैं कुछ शानदार गानों की ओर, ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शिक्षा वो ताकत है जो इंसान का भविष्य बदल सकती है, लेकिन जब शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी होने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट्स और उनके सपनों का होता है। आजकल कभी फर्जी कॉलेज, कभी नकली डिग्री, तो कभी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की खबरें सुनने को मिलती है। कई लोग अपनी मेहनत की कमाई और अपना कीमती समय दोनों गंवा देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी कॉलेज, कोर्स या संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी पूरी जानकारी ज़रूर जांच ले, किसी भी झूठे वादे या लालच में न आए। सही जानकारी और जागरूकता ही हमें ऐसे धोखे से बचा सकती है। याद रखिए, असली शिक्षा कभी शॉर्टकट नहीं सिखाती, वो मेहनत, ईमानदारी और सही रास्ते पर चलना सिखाती है। सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं होता, लेकिन सही रास्ता हमेशा मंजिल तक पहुंचाता है। आइए हम सब मिलकर शिक्षा का सम्मान करें, सही जानकारी अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक बनाएं, क्योंकि पढ़ाई तभी सफल है जब वो ईमानदारी और विश्वास के साथ हो। इसी सकारात्मक सोच के साथ अब बढ़ते हैं कुछ अगले शानदार गाने की ओर। आप सुनते रहिए आपका फेवरेट शो दिल से ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कहते हैं किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा पर टिका होता है। अगर शिक्षा मजबूत होगी तो देश भी मजबूत होगा। आज समय बदल रहा है, नई टेक्निक आ गई है, नई नौकरियां बन रही है और दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में हमारी शिक्षा व्यवस्था भी समय के साथ बदलनी चाहिए। बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि सोचने की क्षमता, नई चीजें सीखने का आत्मविश्वास और जीवन के जरूरी कौशल भी सिखाए जाने चाहिए। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हर बच्चे तक पहुंचे, चाहे वो किसी भी शहर या गांव में रहता हो। अच्छी शिक्षा हर बच्चों का अधिकार है। जब हर बच्चे को सही शिक्षा मिलेगी तभी वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा और देश की तरक्की में अपना योगदान देगा। बेहतर शिक्षा व्यवस्था का मतलब सिर्फ अच्छे स्कूल नहीं बल्कि अच्छे शिक्षक, सही माहौल और सीखने के बराबर अवसर भी है। आइए हम सब मिलकर शिक्षा का सम्मान करें और सीखने की आदत को अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि आज की अच्छी शिक्षा ही कल के बेहतर भारत की नींव है। इसी उम्मीद और पॉजिटिव सोच के साथ अब सुनते हैं कुछ अमेजिंग गाने ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज के इस खूबसूरत शाम का सफर अभी यही तक था। उम्मीद है कि हमारे साथ बिताया ये समय आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आया होगा और दिन भर की थकान थोड़ी कम की होगी। जिंदगी में हर शाम हमें एक सीख देकर जाती है कि चाहे दिन कैसा भी रहा हो, हर रात के बाद एक नई सुबह हमारा इंतजार करती है। इसलिए बीती बातों को पीछे छोड़िए और आने वाले कल का स्वागत नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ कीजिए। अपनों के साथ थोड़ा समय बिताइए, अपने दिल की सुनिए और खुद का भी ख्याल रखिए। छोटी छोटी खुशियां ही जिंदगी को सबसे खूबसूरत बनाती है। आपका प्यार और आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी प्यार के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और अब मुझे दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी एक नई शाम, नए गानों, नई बातों और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने सपनों पर हमेशा भरोसा कीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से ओनली ऑन एमजी मैरी पॉइंट एफएम। साथ है तो बात है।
1: एडमिशन ओपन एमजी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईओटी साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस N6 को छत्रपति संभाजीनगर।
2: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
3: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
4: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 15 नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
3: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा व्हिजिट mgmu.ac.in।

नमस्कार आदाब, आरजे अदनान आपके साथ है और गानों के किस्सों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और ये गाना हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक राग अहिर भैरव पर बना हुआ है। म्यूजिकल थेरेपी होती है ना, तो उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन को छू मंतर करने के लिए इस राग का यूज किया जाता है। ये राग को ना मॉर्निंग राग ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसे मॉर्निंग के वक्त ही गाया जाता है, सुबह 8 से 10 बजे के दरमियान। अहिर मतलब गाय भैंस चराने वाला, और ये राग भी गाय के गले में जो घंटियां होती ना, तो उससे डेवलप हुआ है ऐसा भी कहा जाता है। इस राग को मॉर्निंग के वक्त में सुनने के बाद दिन भर आपका मन एकदम स्ट्रेस फ्री होता है और सुकून भरा दिन आपका गुजरता है। और अपनी इंडस्ट्री में इस राग पर बहुत सारे गाने बने हैं, जैसे कि तो चलिए फिर इसी राग पर बनाया हुआ ये गाना अलबेला सजन आयो रे, ये अभी हम सुनते हैं। स्टे ट्यून विद आरजे।

का मतलब क्या होता है, सेंटर में होता है, वहां से हर एक सिटी के लिए, गांव के लिए बस मिलती है, लेकिन वही बस स्टैंड अगर खराब निकले और वहां पर गड्ढे हो जाए तो क्या करोगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस चलता है चलने तो बल्कि चलता ही रहेगा। ऐसी सिचुएशन अपने शहर में भी है। हेलो, मैं सिर्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। और अपना जो सेंट्रल बस स्टैंड है उसके हाल बेहाल हो चुके हैं, मतलब इतने वहां पर गड्ढे हो गए कि आप वहां पर जाने के बाद आपको फ्री में मसाज तो मिलने ही वाली है। अगर आपको चांद का सफर करना है, चांद के ऊपर भी गड्ढे होते ना, तो कुछ उस तरीके से गड्ढे आपको इस सेंट्रल बस स्टैंड में आपके दिखाई देगा और वहां से बस में गुजरते वक्त आपके ढक्की चिकी ढक होने ही वाली है। और अपने पूरे बस स्टैंड में से ना तो हर दिन 20,000 से ज्यादा लोग, मतलब ट्रैवलर वहां से गुजरते हैं, उन सभी को हर दिन ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। एंड हर दिन का इनकम कितना है पता है अपने बस स्टैंड का, तकरीबन 17 लाख रुपए से भी ज्यादा। लेकिन फिर भी इतना पैसा आने के बावजूद भी ये बस स्टैंड के हाल हवाल कुछ ठीक नहीं हो रहा है। बस रास्तों की बात नहीं, सेंट्रल बस स्टैंड की जो छत है वो भी कभी कभार टिप टिप बरसा पानी, इस तरीके से टिप टिप बरसता रहता है उसमें से पानी बारिश के मौसम में तो, और जो प्लास्टर लगाया हुआ है वो भी गिरता हुआ नजर आता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रशासन के पास टाइम वो तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि प्रशासन बहुत बिजी है हमारा, और ऐसे छोटे मोटे मुद्दों के लिए उनके पास टाइम नहीं है शायद, इसीलिए तक ये काम बस होता है कहकर कब होगा वो नहीं पता है, बस आश्वासनों पर जिंदा है। अब तक तो हमें आदत हो गई इन सब चीजों की, आगे भी होते रहेगी, चलता है चलने दो बल्कि चलता ही रह रहा है। हाँ, कल को अगर कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो गई तो फिर सभी की आंखें खुल जाएंगी और तब इसका मेंटेनेंस होगा, तब तक जाऊं दिया। अब हम क्या ही कह सकते, बस इतना ही कह सकते कि बी सेफ एंड बी केयरफुल, सो स्टे ट्यून विद आरजे अदनान।

हम सभी को एक शख्स का बहुत ही इंतजार होता है, वो है विकास। हेलो, मायसेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। हाय के विकास, आपके आसपास या आपका कोई दोस्त मतलब बड़े लकी लोग यार जिनका नाम विकास है, हर कोई उनको ढूंढता है। हम भी ढूंढ रहे थे तो अपने शहर में विकास कहां पर है, तो आजकल दिखाई दे रहा है बड़े बड़े गड्ढों वाला विकास। जहां देखो वहां पर गड्ढे ऐसे खोदे हुए है, क्योंकि काम शुरू है ना भाई। ऐसा मत कहना कि काम नहीं शुरू है। हाँ, गड्ढे खोदना, उसके बाद 2-4 महीने आराम से काम चलना, ये एक पुरानी आदत है अपने शहर में। अपने शहर में ना 3-4 टाइप के गड्ढे खोदे हुए आपको नजर आएंगे। पहला है पाइपलाइन वाला पानी की, देन ड्रेनेज सिस्टम वाला, फिर गैस पाइपलाइन वाला गड्ढा आपको बड़ा सा नजर आएगा। एंड वो गड्ढा पिछले 1-2 महीने से वैसा ही है और उसके अंदर जो काम होना था वो हुआ ही नहीं। ऐसा एक एरिया ही नहीं, अपने शहर में बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर ये काम शुरू है लेकिन अधूरे काम छोड़ दिए गए है। पता नहीं कि वो आधा अधूरा काम करते हैं और फिर चले जाते हैं, बाद में मूड बना तब आकर काम पूरा कर देते हैं। और इस वजह से दिक्कत क्या आ रही है, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में कीचड़ होता है, बारिश आ रही है, ऐसे गड्ढे ओपन है और खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, इसके अंदर कोई गिर गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा, कोई नहीं लेगा ना। एंड इस गड्ढों की वजह से ना जो मिट्टी है आसपास फैल रही है एंड गाड़ियां भी स्लिप हो रही है। तो इतना मैं कहूंगा कि देखो भाई, काम कर रहे हो आप, विकास का काम कर रहे हो जिसका हम सबको इंतजार था वो हो रहा है, लेकिन अगर वक्त पर हो गया ना तो इसकी तारीफ भी अच्छे से होगी और आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी। और कम से कम आप इतना तो कीजिएगा, जहां पर आपने ऐसे गड्ढे बनाए हुए हैं बड़े बड़े, उसके आसपास तो बैरिकेड्स लगाइए, कुछ सिग्नल लगाइए ताकि लोगों को समझे कि यहाँ पर गड्ढा है। सो मेरी जान, बी सेफ बी केयरफुल, क्योंकि काम तो कछुए के स्पीड से चालू है, कब होगा पता नहीं। बस हमें अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, वरना आपकी एक छोटी गलती से आप सीधे गड्ढे में गिर सकते हो। तो बी सेफ एंड बाकी तो चलता है, चलने दो, बल्कि चलता ही आ रहा है। स्टे ट्यून्ड।

कौन कहता है कि अगर आपको ट्रैफिक का मजा लेना है तो मुंबई पुणे जाना ही जरूरी होता है। अपने शहर के रास्ते किसी मेट्रो सिटी से कम थोड़ी है। हेलो, मायसेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। किसी ना किसी चीज में अपने शहर ने तरक्की की है, वो है ट्रैफिक वाली बात में। और पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि शहर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हमें नजर आ रहा है, चाहे फिर सुबह का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, शाम का टाइम हो या फिर रात का टाइम हो, हर वक्त शहर में ट्रैफिक जाम नजर आ रहा है। और पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा हो गया है जहां वहां पर ना तकरीबन आधा घंटा एक घंटा जाम में खड़ा रहना ही पड़ रहा है। अभी आप घर से निकले होगी ना, तो कुछ दूरी पर जाने के बाद जैसे अपना आकाशवाणी सिग्नल हो, दूध डेयरी सिग्नल हो, बाबा पेट्रोल पंप हो, तो यहाँ पर आपको ट्रैफिक जाम नजर आएगा। और शाम के वक्त तो आकाशवाणी सिग्नल से लेकर मोंडा नाका ब्रिज के ऊपर तक लंबी कतार लगती है ट्रैफिक की, इतना लंबा जाम हमें नजर आ रहा है। तो आपको अगर वक्त पर किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो वक्त से पहले घर से निकलिएगा, क्योंकि फंस गए तो बड़ा पछताओगे। बाद में मत कहना कि मुझे तो नहीं पता था ऐसा कुछ हो रहा है अपने शहर में, अब पता चल गया। याद रखिएगा, एंड ट्रैफिक से मुक्ति हमें कब मिलेगी ये तो किसी को नहीं पता भाई। सॉल्यूशन बस एक ही है कि रॉन्ग साइड से आने वाले लोग थोड़ा तमीज में गाड़ी चलाइएगा, सीधे साइड से चलाइएगा, वरना सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम इन्हीं लोगों की वजह से। और ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिएगा, देखो फिर अपने आप ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जो रूल्स ब्रेक करता है उन्हीं की वजह से ट्रैफिक जाम लंबा होता है। तो ख्याल रखिए, और बाकी तो ट्रैफिक में फंसे फंसे बोर नहीं होगे आप, मैं आपके साथ रहूंगा और सुपर हिट गाने भी आपके साथ रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।

जिसके पास जो चीज होती है ना उसको उसकी कद्र नहीं होती, ये बात सच है यार। वैसे अपने शहर में भी हो रहा है शायद से। हेलो, मैं सेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। इतना बड़ा ऐतिहासिक वारसा हमारे शहर में है, 52 दरवाजों का शहर है, किले है, लेकिन कहते ना जिनके पास जो चीज होती है उनको उसकी उतनी कद्र नहीं होती। ऐसा महसूस हो रहा है अबाउट अपने शहर के दरवाजों के बारे में। 52 दरवाजे अपने शहर है, सिटी ऑफ गेट के रूप में इसको जाना जाता है, लेकिन ये दरवाजे कितने क्लीन है ये हम सभी की नजरों के सामने है। बहुत सारे ऐसे दरवाजे जो कि गिरते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारे दरवाजों के आसपास तो पूरा अतिक्रमण हो गया है। तो रूल्स और रेगुलेशन क्या कहते हैं कि ऐतिहासिक वास्तु आणि तटबंदीच्या 15 मीटर एरिया मध्ये पक्की बांधकामे करण्यासाठी आणि अतिक्रमण करण्यासाठी सक्त मनाई आहे, पण हे रूल्स फक्त कागदावरच आहेत। बिकॉज रियालिटी में हमने देखा है कि बहुत सारे अपने शहर के जो दरवाजे है जिसे अपने शहर की पहचान है उसके आसपास पूरा अतिक्रमण हो गया है। अब प्रशासन ने एक मुहिम शुरू की है कि जो अपने शहर के दरवाजे है उसके आसपास जितना भी अतिक्रमण रहेगा वो पूरा हटाने वाले है, वो पूरा क्लीन करने वाले हैं। 15 मीटर एरिया के आसपास कोई अतिक्रमण नहीं रहेगा, साफ सुथरी जगह रहेगी ताकि अपने शहर की जो पहचान है सिटी ऑफ गेट वो बरकरार रहे। एंड बाय द वे, ये बस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है। ऐतिहासिक स्थल है तिथे जाऊन अपन कचरा करतो, बिंदास अपन पानी की बॉटल तिथे टाकतो, थुकतो आणि अस्वच्छता ठेवतो, पण हे चुकीचं करतायत ना तुम्ही। तो बदलाव चाहिए तो प्रशासन कर ही रहा है, अपने आप से भी हमने पूछना चाहिए कि हम भी बदलाव चाहते हैं, अगर है तो सुधरना तो हमें भी पड़ेगा, सुधरेगा। एंड आई होप अब प्रशासन जो मुहिम शुरू कर रहा है तो इससे अपने सिटी ऑफ गेट्स एकदम खूबसूरती से साफ नजर आएंगे एंड अतिक्रमण मुक्त नजर आएंगे। बाकी स्टे ट्यून।

बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे एक पता चली जो आपको भी जानना बहुत जरूरी है ऐसा मुझे लगता है। हेलो माय सेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और हम सभी ने ना तो अपने शहर का ये सुपर डुपर हिट गाना तो सुना ही होगा जिसके बिना हमारी सुबह दोपहर शाम आजकल होती नहीं है। और एक गाने में एक अलग वाइब तो है यार। और जैसे गाना प्ले होता है तो हम सभी लोग घर के बाहर आते

और यू नो व्हाट, ये जिंगल किसने गाई है पता है? ये जिंगल गाई है शान। जी हाँ, बॉलीवुड के सुपर डुपर हिट सिंगर शान की आवाज है। मुझे भी अभी पता चला था, आई थिंक मुझे बहुत लेट पता चला होगा ऐसा लगता है, और बहुत लोगों को पता भी होगा, किसी को नहीं होगा तो पता चल जाएगा। और ये ऐसी जिंगल है ना भाई, अपने लवों पर ही आ ही जाती है। और आजकल हम सभी की नींद ना तो किसी अलार्म से नहीं बल्कि इस जिंगल की वजह से खुलती है। शहर में ना तो सफाई भी आजकल बहुत दिख रही है, एंड ये जो घंटा गाड़ी है अब रात के वक्त भी और दिन भर भी हर एक गली मोहल्ले में आती है, कॉलोनी में आती है और पूरी सफाई करती है। इससे आई होप कि बहुत जल्दी अपना शहर भी एकदम साफ सुथरा हमें नजर आएगा। एक नंबर होइल छत्रपति संभाजी नगर। सो स्टे ट्यून्ड।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे।
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
3: साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।